0: भगवान श्री सत्य साई बाबा सेस
1: ट्रस्ट बिगेट्स ट्रस्ट, लव बिगेट्स लव, लव मेक्स द होल वर्ल्ड वन स्किन. जस्ट एज अ गार्डनर विल रिमूव द वीड्स, डिस्ट्रॉयज द पेस्ट्स एंड प्रोवाइड वॉटर एंड मैन्योर व्हेन नेसेसरी, सो ऑल्सो शुड यू नरिश लव and pluck out the weeds of hatred and envy. Wear red glass, and all things will appear red. Wear the glasses of love, and all things will appear lovable and good.

निरंजन जचना गुर प्रसाद पाई है परमार्थ सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद आद जिस कोय न जाने शिव ब्रंच तर ध्यान नित जिस वेद बखाने। निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समरथ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो जन्म मथुरा रसना रस श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बस। गुरु समरथ गह करिया त्रुव बुद्ध सुमत सुमारण कौ फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण कौ। मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पवसागर पार उतारन कौ। संतत ही सतसंगत संग सो रंग रते जस गावत है। धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिव तारना तावत है। मथुरापन भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर सदा सब दर्त नागर। संत मराल करै कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल युग दुर्त दूर कर बे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरै फिरत सगल जुग कब होक को उपावै आत्म प्रगास कौ। वेद बाणी सहत बरंच जस गावै जाको शिव मुन गह नात जात कबलास कौ। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कौ। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास कौ। नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तिहो लोक प्रगासे। देख दर्श पटक भ्रम पजत दुख परहर सुख सहज बिगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत आलस मुह जो कुसम सुभासे। बिद मान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहत अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद्ध अर सिद्ध न छोडे साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो एहो तथ। ताहे कहां परवाह काहू की जा कै बसीस धरयो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई। अपने आप ही हो पायो।